0: location for maximum music.
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
4: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज़ बैंक अकाउंट में, पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रात से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
5: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाए और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराए राज़।
1: This program is brought to you by
6: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, price सिर्फ 64,49,000.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।

0: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: It's cricket season. Easy paisa de raha hai brand new Honda City. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है. जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो. शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद.

इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे।

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: It's 2:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition. Price sirf 64,49,000.
3: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है. क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

0: टेंशन कई को लेता जानी, सब मिलेगा सब मिलेगा।
1: कर बैठ खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन प्राइस सिर्फ 64,49,000
0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. क्योंकि रकमी है 100% Islamic.

इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100। इरशाद बारी ताला है, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। सूरह अनफाल।
2: इट्स 5 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक। यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
4: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين। तुम्हें दोजख में किस चीज ने डाला? हम नमाज नहीं पढ़ते थे।

0: क्रॉस।
1: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।

0: रोस्ट।
1: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
2: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.

0: Avail flat 25% and 40% off at the Diner's Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी. बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: हेलो, गेस व्हाट? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: पेपाक है तो पाकिस्तानियत है
2: एंड मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: एंड अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
4: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक। यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
5: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين। तुम्हें दोजख में किस चीज ने डाला? हम नमाज नहीं पढ़ते थे।

0: पाकिस्तान।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: अवेल फ्लैट 25% एंड 40% ऑफ एट द डाइनर्स मेगा फेस्टिव सेलिब्रेशन। हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
5: This program is brought to you by
6: पेपाक है तो पाकिस्तानियत है।
7: एंड अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
8: एंड मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: दान।
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: अवेल फ्लैट 25% एंड 40% ऑफ एट द डाइनर्स मेगा फेस्टिव सेलिब्रेशन। Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, iPhones और iPads जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
7: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
6: Ye paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator.

कंडक्टर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशादे बारी ताला है, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमर करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। सूरह तौबा।
1: FM 100।
3: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
7: एंड तो भाई साहब क्या समझे।
8: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: इट्स 7 PM। This time check is brought to you by
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
10: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين। तुम्हें दोजख में किस चीज ने डाला। हम नमाज नहीं पढ़ते थे।

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: अवेल फ्लैट 25% एंड 40% ऑफ एट द डाइनर्स मेगा फेस्टिव सेलिब्रेशन हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं शोबे सिंगल रेमेडी जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया

0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
2: अवेल फ्लैट 25% एंड 40% ऑफ एट द डाइनर्स मेगा फेस्टिव सेलिब्रेशन। हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
4: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
4: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू

0: इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ यही नहीं, 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: अवेल फ्लैट 25% एंड 40% ऑफ एट द डाइनर्स मेगा फेस्टिव सेलिब्रेशन। हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1,00,000 का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: One station. 100 FM.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
0: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन। प्राइस सिर्फ 64,49,000।

0: विवाद स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333-555-0001।
1: This program is brought to you by
2: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition. Price सिर्फ 64,49,000.

0: This program was brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition price sirf 64,49,000.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या

सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है कर वाले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: Sufi special quality soap aur sevaiyan.
1: FM
2: 100 जब भी बोल तू बोल रे बंदे पहले उनको तोल क्योंकि वो बहुत अनमोल है लेकिन बोल ही खोले बोल
3: बोल

शान को हैरानी में, क्योंकि सपने काम बिगड़ जाते हैं नादानी में। तो डूब सकता नहीं तू, बाकी वो तो